0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: हम रेडियो हम वतन कोपेनहेगन के स्टूडियो से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारी ये नशरियात ऑनलाइन टीवी नई दुनिया पर भी पेश की जा रही हैं। और अब हम पेश करते हैं अपना हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग। इस प्रोग्राम में आपके मेजबान जनाब बाशी कुरैशी गुज़श्ता हफ्ते के अहम दैनिश और आलमी खबरों का तज़िया करते हुए उन पर तबसरा भी करेंगे। तो लीजिए पेश खिदमत है हमारा हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग।
2: मोहतरम सामईन और नाज़रीन, रेडियो हमवतन कोपेनहेगन और टीवी नई दुनिया की जानिब से आप सबको आदाब और सलाम। आप जहां भी हैं खुश व खुर्रम रहें। मैं हूं आपका मेज़बान बाशी कुरैशी। आज के इस हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग में हम हसब मामूल हफ्ते रफ्ता की अहम खबरों पर बातचीत करेंगे। मौजूआत सियासी, समाजी और मालूमाती नौयत के होंगे। और इन सब खबरों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन पर जनाब नसर मलिक साहब मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले कि हम जनाब नसर मलिक साहब की तरफ चलें, हमने काफ़ी छोटी छोटी मालूमाती खबरें इकट्ठी की हैं, वो आप तक पहुंचा देते हैं। क्योंकि आने वाले दो हफ्ते जो है रेडियो का प्रोग्राम नहीं होगा। रज़ा साहब छुट्टियों पे जा रहे हैं, पता नहीं स्पेन जा रहे हैं, फ्रांस जा रहे हैं। लेकिन यह है कि अगला प्रोग्राम हमारा जो है वो 16 अगस्त को दोबारा होगा, दो हफ्ते के बाद। तो ये चीज़ आप ख़ास तौर पे हमारे जो मुअज़्ज़ज़ सामईन और नाज़रीन हैं जो हमारा प्रोग्राम बड़े शौक से हर संडे को सुनते हैं, उनके लिए है कि वो थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। मालूमाती खबरें हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कि ये मौसम जो है अजीब व गरीब आँख मचोली खेल रहा है। कभी कभी गर्मी, कभी जो है ठंड, कभी बारिश। तो महकमा मौसमियात ने ये बताया कि आने वाले

0: उस पर रद्द अमल का इशार करते हैं। पर जैसा कि आपने अभी कहा, उन्होंने ये वाजे कर दिया कि वो इस मामले को कौमी सतह पर अपनी पार्टी में पेश करेंगे
1: जी,
0: और उससे जवाब तलब करेंगे कि ऐसा क्यों है जबकि यहाँ जनमत में बुरका इस्तेमाल ही नहीं होता।
1: जी जी बिल्कुल
0: जी। तो इसके ऐसे शोशे छोड़ने और वक्ती मकबूलियत हासिल करने के अरबे क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं,
1: और उनकी पार्टी जो है उसको कई गैर मुल्की पसंद करते हैं, रेडिकल वेस्ट्रा के वो मेंबर हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी को जो काफी लताड़ा है इस बात पे।
0: जी हाँ, और देखिए सियासतदान जो है वो भी गलती कर सकते हैं
1: जी जी,
0: लेकिन ऐसी गलती जिस जो एक मखसूस बरादरी की तरफ इशारा करती हो और उसे निशाना बनाती हो, उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो सरजद हो। सियासतदानों को खुद सोचना चाहिए कि वो क्या बात कर रहे हैं, कैसे इकदाम की सिफारिश कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में काशिफ अहमद ने इस बात पर जिस तरह से एहतजाज भी किया है और इस बात को अपनी पार्टी में पेश करने और उनसे जवाब तलब करने का ऐलान किया है, वो काबिल सताइश है।
1: बहुत खूब, और हमारी ये ख्वाहिश है और उम्मीद भी है, जैसे हमने पहले भी बात की है, कि हमारे दूसरे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं मुस्लिम पार्टियों में, उनको भी चाहिए कि वो ऐसे मसले पे बात करें जिससे सोसाइटी पे, अपनी कम्युनिटी पे बड़ा असर पड़ता है और जिससे उनके
0: आपने बहुत अच्छी बात की। इस वक्त बल्दिया कोपेनहेगन में कुछ और भी हैं बैठे हुए।
1: जी जी बिल्कुल,
0: और मुसलमान इस्लामी वो अपनी शनाख्त भी रखते हैं, और मेरे ख्याल में एक दो और भी पाकिस्तानी हैं। अगर ये सब मिलकर काशिफ अहमद की आवाज़ में आवाज़ मिलाएं तो ये नारा जो या ये फितना जो अब शुरू किया जा रहा है, इसका मुनासिब सदबाग किया जा सकता है।
1: बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल ठीक है। नसर भाई, हमेशा की तरह हम आपके बहुत मशहूर हैं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया।
0: बहुत शुक्रिया, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज छोटी छोटी खबरों में आपने बड़ी अहम बातें बताई। खास तौर पर हमारे जो बुजुर्ग हैं
1: जी,
0: उनको ध्यान रखना चाहिए अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के मुताबिक, और शुगर से बचने के लिए तदाबीर जो हैं उनको अपनाना चाहिए। मैं आपके सामीन और नाजरीन को सलाम अर्ज करता हूँ, और इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अब दो हफ्तों के बाद।
1: हाँ जी, अच्छा नसर भाई, दो आने वाले दो हफ्ते रेडियो जो है कोई प्रोग्राम नहीं करेगा क्योंकि समर की हॉलीडेज हैं, तो आपको भी हम रेडियो के लिए नहीं तकलीफ देंगे, लेकिन आपके साथ प्राइवेटली हम मिलेंगे ज़रूर, बातचीत करेंगे, आपके पास आएंगे, आप शहर आएंगे।
0: चश्मे मां रोशन दिले माशाद,
1: बहुत बहुत
0: थैंक यू, जीनत बख्शेंगे, इससे बड़ी और क्या बात है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया नसर भाई। रजा भाई, ये था आज का हमारा प्रोग्राम बाशी के संग। उम्मीद है हमारे सामिन और नाज़रीन को ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। 16 अगस्त तक, और हाँ 14 अगस्त को पाकिस्तान एम्बेसी में पाकिस्तान की 79th जो है इंडिपेंडेंस डे है, तो प्लीज़ आप ज़रूर जाएं उसमें और अपने दूसरे पाकिस्तानी बहन भाइयों के साथ मिलके पाकिस्तान की यौम आज़ादी पे को खूब अच्छे तरह मनाएं।
2: बाशी साहब, ये बताइएगा कि ये जो पाकिस्तान एम्बेसी में इस मरतबा 14 अगस्त का प्रोग्राम हो रहा है वो 9 बजे होगा या 10 बजे होगा?
1: 10 बजे।
2: 10 बजे ये अनाउंस कर दिया
1: उनकी वेबसाइट पे, अगर जाए ना फेसबुक पे
2: जी,
1: तो वो जो है आप उस पे पढ़ सकते हैं।
2: तो बाशी साहब, इसी तरह पाकिस्तान सोसाइटी भी जो है वो 14 अगस्त को एक प्रोग्राम कर रही है, अब प्रोग्रामों की बात चल निकली है, तो उसमें जनाब पाकिस्तान सोसाइटी 14 अगस्त को स्कॉल ऑन मेरापुर नंबर 9 बवक्त 4 बजे जो है वो ये प्रोग्राम होगा।
1: अच्छा, तो वो उसमें सब वो ओपन है सबके लिए या सिर्फ सोसाइटी के मेंबरान के
2: लिए? नहीं, ये सबके लिए है, ख्वातीन हजरात के ओपन प्रोग्राम है ये।
1: अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके लिए हम एम्बेसी और पाकिस्तान सोसाइटी और दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पाकिस्तान यौम आज़ादी मनाना चाहते हैं, तो बड़ी खुशी की बात है।
2: बाशी साहब, एक और था मेरे जहन में, अब उसका एग्जैक्ट 1 अगस्त को जो है वो मांगो फेस्टिवल जो है वो दोबारा किया जा रहा है, मैं अभी देखता हूँ अगर मुझे उसका एड्रेस वगैरह जो है वो मिल जाए।
1: मेरा ये वहीं पे है बेलारूप में, सॉरी बेलारूप कह रहा हूँ, अल्बसलून में, जहाँ पे खुरम शेख खुरम साहब ने कराया था, उन्हीं ने कराया दोबारा। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ रजा भाई आपसे। अभी देखिए यहाँ पे अगस्त में

0: पाकिस्तानी अम्बेसी भी करा रही है, लेकिन वो मैंगो नहीं मंगवा रहे, वो इंडिया की काफ़ी सनती जो मसनूआत हैं उसकी एग्जीबिशन करेंगे। हमारे यहाँ बस यही है, मैंगो और कपड़े, उसके अलावा तीसरी चीज़ हम वहाँ से पाकिस्तान से मंगवाते नहीं हैं। हालांकि पाकिस्तान से और बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं, हैंडीक्राफ्ट भी आ सकते हैं और चीज़ें भी आ सकती हैं। ये मुझे समझ नहीं आती कि हमारे लोग उसकी तरफ क्यों नहीं सोचते।
1: ये बाशी साहब, ये हमारे जो अम्बेसडर साहब आए थे यहाँ, गर्देजी साहब,
0: उन्होंने कराया था।
1: ये मांगों का जो है वो उन्होंने कुछ रबते यहाँ लोगों से करवाए और फिर उसके बाद जो है वो एक सिलसिला चल रहा है। लेकिन हकीकत में जिस तरह आप कह रहे हैं, पाकिस्तान अम्बेसी जो है वो 14 अगस्त को प्रोग्राम करती है, अब तो वीकेंड में भी आते हैं प्रोग्राम, तो वहाँ पे जो है सिर्फ ये घंटे दो का प्रोग्राम के बजाय उसको वसीह करके।
0: लेकिन मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अम्बेसी चाहे
1: जी
0: तो वो इंडियन अम्बेसी की तरह एक इंडियन पाकिस्तानी फेस्टिवल कराएं जिसमें मैंगो भी मंगवा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में छोटी छोटी मसनूआत जो हैं जो इस मार्केट के लिए भी अच्छी होंगी उसकी भी नुमाइश कराएं।
1: सर वही जो आपकी तरजीहात पे है, मुझे याद है कि कुछ साल पहले, अब तो 14 जो कोपेनहेगन मेला था वो अब काफ़ी अरसे से नहीं हो रहा, तो वहाँ पे जब लास्ट तकरीब हुई तो वो पाकिस्तान अम्बेसी ने अपने नाम पे जो है उसको कर लिया था कि जी हमने उनके साथ मिल के किया, जबकि पाकिस्तान अम्बेसी का उस 14 जो कोपेनहेगन मेला है उसके साथ उनका कोई तल्लक नहीं था। तो ये है कि हम जो है वो सस्ती शोहरत लेने के लिए जो है वो काम कर लेते हैं। लेकिन बाशी साहब, पहली अगस्त का जो मैं जिक्र कर रहा था, जो मांगो शेख के समर फेस्टिवल हो रहा है, वो जनाब एल्बर्टन में होगा और ये इंग्लैंड स्वाय नंबर 7 में ये पाक डन एकेडमी जो है वो इसको अरेंज कर रही है, जिसके जो है वो शेख खुरम साहब करता धरता है।
0: अच्छा, मैंगो के तवस्से से एक और भी बात बताऊं, पाकिस्तान में अभी बड़े पैमाने पे ओलिव, एवोकाडो और दूसरी ऐसी चीज़ें जो इस मार्केट में इस्तेमाल हो सकती हैं, उसके बारे में भी हमारे पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो यहाँ पे, उनको सोचना चाहिए कि मैंगो तो ठीक है वो अपने लोग भी खाते हैं, दूसरे लोग भी खाते हैं, लेकिन मुस्तकबिल तौर पे यहाँ की जो सुपरमार्केट्स हैं उसमें इन दूसरे, और कीनू एक ऐसा फल है जो कि मशरक़ वस्ता में ज़रूर जाता है लेकिन यूरोप में नहीं मंगवाया जाता उसको, तो थोड़ा सा उसको थोड़ा सा बेहतर किया जाए, उससे पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट की भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, और यहाँ पे जो मार्केट सुपर मार्केट है उसमें भी आप अपनी चीज़ें ला सकते हैं।
1: बहुत शुक्रिया बाशी साहब। और सामीन और नाज़रीन, ये था बाशी के संग प्रोग्राम, और अगले थोड़ी देर बाद जो है हम बिस्मिल्लाह करा प्रोग्राम लेके आएंगे, जिसमें जनाब मैंने बाशी कुरैशी साहब को उनसे रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा वक्त दे ताकि हम जो है वो मुख्तलिफ जो बैनुल अक्वामी ख़बरें हैं उन पे हम जो है वो थोड़ा सा तबसरा करें। तो सामीन नाज़रीन, चंद ही लम्हों के बाद जो है आपकी खिदमत में हम दोबारा हाजिर होते हैं।
2: आप और हम वतन एक संग, नए रंग नई उमंग। हमारा टेलीफोन नंबर है 33 21 29 84, ईमेल radio@hamwatan.org।